0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि सेवा वा करम और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग योग दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करा वन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं आत्मा, करण हार वन हार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनेगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? कारण हार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूं। कारण हार के बजाय अपने को खराब हार जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा

Baya, sete de colete, araiate, lagar, kazanem. Robin C. Caravana.

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सदा

Shit.

Gerade ich.

0: sama apa nih? Or mess up kamu? Jusnya teh apa pun jauh teh na? Wah, hal kapan nate?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, हर बच्चे को बेफिक्र बच्चा

Capi vale bien. Tu pot ser.

Entonces,

Bye-bye.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण हाथी माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएंगे। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नत

दृश्यमान और निर्माण दोनों की बैलेंस

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ से बोलते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता। ऐसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप की मदद तो है लेकिन समय पड़ने में।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस Yes, sir.

0: अपसेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते, तो बिना बिना श्रेष्ठ स्थितियों के सीट पर सेट रहो, इसको कहती है एकाग्रता की शक्ति।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला पन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और जाए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिस्टा लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना और अचानक होना, इसका अभ्यास अगर सेवा भी की लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहे कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए बाप लेना कोई नहीं थे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी लेकिन और 3 सब्जेक्ट। अगर 1 सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और 3 में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा? 4 ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स करो।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

喜欢你。

Jesse Saints. Peace.

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं से कर रहा है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से फैला सकते हैं।

sit up. Aap master gyan suniye. Bachcho dwara.

0: Chop Joe. Jesse Joe. Chop Duck Joe. Top Duck. Monaco. Icagar. Corsac.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सफलता का काश मैं ये विशेष समृद्धि में इमर्ज करूं, मर्ज नहीं इमर्ज करूं, से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, इस जैसे नशे से रुआन नशे से आप माने नशा नहीं रुआन नशे से उड़ते चलो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है स्थिति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा चतुर छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारिया अटल Because

Possibly some pin up with the vegan PDK. But don't give me a total body, me a sapphire. Licking. Chatra chaya rita. Reina. Koinuk sanoa. Vale. Hangame mein darkar ke sab chhod kar ke bhag gaye. Jab Pakistan hua to kya hua? Sab bhag gaye. Aur ab is lagti thi na woh chori kaise pyar hota hai na usse to jo sindhi log anti the apne jo us samay और सामान भी दिया जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए तो आप यूज करो और दुनिया वालों के लिए 5 रुपए में सारा बैल काटी सब्जियों की थी 5 रुपए में सब्जियां कितने मजे से सब्जियां खाते थे तो वाले डरते थे और आप लोग

0: noi. Chatra Jaya Pan. Kitna safety se stop na ka kaarya kiya.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्यूटी को रायलिटी, पर्सनलिटी, रियलिटी, रायलिटी कहा जाता है। तो अपने रॉयलिटी को याद करो, अनादि रूप में भी आप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देव सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि कितने रॉयलिटी है। फिर द्वापर में आओ, आपके चित्रों की रॉयलिटी और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बन सब खुश हो जाते। चित्रों द्वारा भी कितने दुआएं लेते, तो ये सब रॉयलिटी जन्म सिद्धाधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाए। उस समय वैराग्य जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस जन्म

0: को संपन्न करना है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ बोल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस मोटे रूप से

0: Skilleste. Abosme. Nikalna. Baap dada aaj nahi sunate.
1: Say.

0: संपर्क में।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भोजपुरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी देनी ऐसा खुशी खुशी से, संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्ति सीट पर रहना मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सदा सीट रहना, बोलना नहीं। स्वमान है ना ये, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने समय की परवाह आज ये भी कहा कि सहयोगी है, लेकिन अब यज्ञ नहीं बनो। वारिस को योगी

0: चैंपियन के सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहाँ भी जोन में हो सहयोगियों को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करो और उन्हों को विशेष एक बल भरो और आगे बढ़ने का जब तक किया उसकी मुबारक दो और आगे बढ़ने का प्लान बना के दियो, क्योंकि औरों को भी आगे बढ़ने का विधि सुनानी पड़ेगी। तो सभी जोन मिलके एक एक वर्ग का जहाँ विशेष स्थान है वहां इकट्ठा करो फिर देखेंगे उस संगठन में कितने आती है क्या आगे चाहिए। ऐसे संपर्क में लाएंगे तो वारिस बनते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tschüsschen.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को I'm

0: He said he did me. Beach me ye. Apna chat ji karo. Sarva khazane. Jama kitne ki.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सबकी बातें कहाँ

0: Zingaro. Que Polchar Chera.
1: समस्या ऐसी थी।

0: समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हूं। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे बदलता जैसी बात वैसे अपना स्वरूप नहीं बनाओ, बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल। जैसा समय जैसा सरकमस्टेंस वैसे स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मौज जाते हो, हम मौजना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मौजेंगे नहीं मौजेंगे क्या? अभी नहीं मौज रहे है सिद्धि, अभी मौज में हो, इसलिए साथ

में नहीं सही तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? नहीं तो सदा मौज ही मौज है, सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो। Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध कार्ड, उसको यूज कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये पढ़ कहता, चाहते जैसे वाणी द्वारा पार्थक्यता करते हो, तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा पड़ता। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव किनों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। क्वेश्चन उठे उनके मन में, ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपन ने बाप समान बनने के स्थिति

0: इस वातावरण में रहते हुए ऐसा कोई बन सकता है तो आप उनको ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं आजकल परमाणु को ज्यादा मानते सुनने से भी ज्यादा देखने जाते चारों और कितने बच्चे हर एक बच्चा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कहीं जब कहा थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी रुई बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। स्मृति रखो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

frazzo di vangiano di usme amara vi paro na jai akar bhi hum log ko kab chance mile aur aapki ichha hai आप इशारा भी करते लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिलता है तो उस समय चिड़चिड़ा बनाते।

उनकी मृत्यु व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। अब फर्क करना विचार देना इसके लिए उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वह मुख से Yeah.

0: Повытрытаканием. Покаке. Лакау. Мотуге. Тохи пилакау нераке. Кисору на чахи.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये याद उठाना भी मदद।

0: मतलब किया उसको हल्का नहीं कर। चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं, तो जो चाहना है कहा है हाथ उठाए नहीं, मन की मेरी चाहना है इसीलिए हाथ उठाए, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को न देख करके बढ़ने की बात को सोचो, हो जाएंगे और कौन बनेंगे, आप ही तो बनने वाले हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिन से किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्त नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के यूज करते हुए उनकी परवाह में नहीं है। त्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में में जा रहे हैं, तो अभी सच्ची वैराग्य वृत्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप पहले स्वयं में फिर विश्व।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में काम दिया था वो तो भूल गए होंगे। कम से
2: साधन
1: बदमाशी करेंगे क्या? करेंगे, नहीं करेंगे ना। और ठीक कला की बासी करना और कोई बासी नहीं, कृति कला की बासी, बहाने बासी, कमजोरी की बासी, ये सब समाप्त।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: अवश्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

0: सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे, प्रसाद कभी किसका पर्सनल कहा नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और 5 ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो तो जाने हो सेंटर पर कोई एक सखी को साथ।

0: सुना दूं और अपने बड़ी को सुना दूं तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर वन लेना।
1: दूसरों को कराएंगे
0: भी और अपना अनुभव सुना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देंगे।
3: सभी ने ध्यान से दोनों कानों खोल के सुना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय अनुसार दीवार पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। दीवार पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। बच्चों का तो बेफिक्र बच्चा का रूप देखना अभी इसी रूप को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समान भाव जल्दी बन सकते।

api. Yes.

apa sansara. Tusrana koi. Isse ikagar. Sem.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीवर करना। जो भी आए मेरा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। लोग आपस में उसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो भी ठीक, सब सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति ले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शांति तो

hecho por puro 10.

कोई मांगे नहीं मांगे।

0: सेवा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के साथ

Sabi, समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देते, ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जवाब के बने तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन माना, धन जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया किया है। अच्छा दिला रहे, ठीक पक्का किया है। धन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है किया। अच्छा तो जब धन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर मेरा पन है कुछ होता ही क्या? धन

Lydia. Yes.

Thailand. Seven, eight.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिक्का सिर्फ सिक्का नहीं, तो अगर सिक्का देती भी है, देने पड़ते भी है, लेकिन किमिया और सिक्का, किमिया रूप बन के सिक्का दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्का का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्का दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्का देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्का है, तो सिक्का सिक्का की सिक्का नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्का साथ साथ हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे अभी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Awesome.

Cosa da

एक बच्चा अपनी कमजोरी को तो जानते ही है, जो विशेष कमजोरी हो आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी। वो कमजोरी

जैसे हाथ उठाने में एवा रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवा रेडी। दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न पाप के दिल पसंद पसंद।

dog said they

Hoje creio. Abre. Hoje.

joke.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

push.

0: José Terra. José Terra. Cuxi. Que fascista.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Peace.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अपने

0: खुशी नहीं कम है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सारे दिन में, सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय संकल्प सेवा संबंध संपर्क में स्नेह संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब ये चेक करो, सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह ले जाए, कुछ ना कुछ ले जाए।

理解。Time 内言 ，But。

में सने सहयोग

सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना। नजर से निया

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Grise.

10.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि चतुराई से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होते। ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक तो को देख करके भीखा भी करती है, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत हावी हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे दिखाई भी दो लेकिन काम किससे है, पाप से या आत्माओं से, किसे काम है? पाप से तो पाप के दिल में अर्थात सारे कलप के प्रलब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहां आत्माओं को काबी करते हो आगे बढ़ने में, वो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है। भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन इस समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Name.

Thank you.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Achoo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Shadow.

बच्चों को हर बच्चे

is it?

Snuff.

Bien.

coucher.

हर एक बच्चे के नैनो में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय मुझे सेवादारी सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राइल लो बाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करूं, धन से मन से धन से और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता, फिर भी मेरा नाम कभी भी वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासा बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं। बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम बिजी रहे, ये भी होता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना क्या है? करना या ना करना ये की बात है, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इसे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब से होगा करें। तो ये भिन्न भिन्न विकार का विकारों का रायल रूप है, और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया, लेकिन आप अपमान आ गया या अपने मान्यता का, हमारी मान्यता
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Essay.

sudden end.

现在。

Hey,

सने का सागर है।

μόνο μερέτε. Λέγε τσούσον έμε. Something.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

और अब घर चलना है। ये कानों में गूंजना चाहिए, बार बार अब घर चलना है। तो धुन लगा दो, but

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पत दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पत दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पत दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर शराब पी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी प्यार के पालना से आगे बढ़ रही है या कोई बीच में विघ्न आता है? रुकते तो नहीं है? बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का, संग

Fishy.

0: दूसरी बातों को नहीं देख। आगे सुनते भी जैसे नहीं सुनो, खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से की जाती है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो पारस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो पारस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, पाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में, फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना, परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पर्चा तो बनती जाएंगी साधारण पर्चा, लेकिन अभी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बीमारी को मरा देती क्यों?

por

नहीं लगना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और क्या होता है ये पार्ट पक्का हो जाता है ना, मैं बीमार हूँ तो

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसी चारों ओर के परिस्थितियों के बीच में

0: cosa, Teo. Easy practice. So you have me.
1: मन बुद्धि को

सर्वशक्तिमान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिवान

0: Ciao. Ciao, ciao. Fa man e cagaro. Pusharat. Ek minit lage. Ek second me full stop. क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है, इसलिए माइंड कंट्रोल मेरा मन है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सेवा।

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

Cine Kebab.

Oh, shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Gotcha.

Okay.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: Avke to dil mein shubha bete dilaram hare ke dil ka dilaram aur ye dil ke dilaram se sada amrit और मुबारक देते रहना, ये तो लोगों को सेवा के अर्थ जहां तहां झंडा लहराती है तो उनके दिल में भी स्मृति आवे, मेरा बाप कौन पहचानते नहीं है ना, तो उनको पहचान स्वयं बाप बेटे। इसका यादगार या आपो में ही दिल वाला मंदिर तो सभी को
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो कर रहे हो, खाली तो नहीं बैठे हो। जैसे जैसे पंप फाड़ डालते है ना आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक पंप लगाओ, एटम पंप नहीं आत्म पंप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल, टाइम पर पहुंचने की मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब पुकार सुनता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी दिल छोटी नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता।

0: what her name or not. The Bob Lillen. Pyar ke rassi se aisa bandh ke rakho jo hil nahi sake.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Simon. Garam karna. Knowledge full banna. Full knowledge.

você. Suck.

Sí.

Yes.

Sarabi. Mokasin.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा, बेफिक्र बादशाह, फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। खुशी नहीं कमाए, ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो What the?

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पुरुषा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषा रत नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीवर पुरुषा रति बढ़ना ही है। समय की पुकार तीवर पुरुषा रति
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं साता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से दिन, करके दिखाता effect.

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

बच्चों द्वारा

0: बातें होनी चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पुरुषार्थी नहीं,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

से पावरफुल होना चाहिए। जो जो भी वीआईपी आते हैं या साधारण आते हैं, ऐसे लगे जैसे कहां पहुंच गए हैं, ऐसा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Fresh.

शरीरक्रल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली। मैं फरिश्ता हूं, इस पुरानी दुनिया पुरानी दे पुराने देह के संस्कार से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है

0: sé qué decir. Mira, papá. Isle. Papá, vi a ti, Pierre. Será papá, da. Ekbat. Ferse. Yad de la ra. Que apana chera. Sada. Kushnima. Kushime. Chamaktare. Batri chali je. Lekin kushi nahi je. Sangam yoga ki khushi Parmatam gift hai. The holy artat koi aisi baatein aave to yaad karna ki holy mana ke hai. जो होली बात होली खुशी नहीं जे परमात्म सौगात खजाना खुशी बाप दादा सदा कहते हैं ये स्लोगन सदा याद रहे खुश रहना है और खुशी बांटनी जितने बांटेंगे उतने बढ़ेंगे और खुश नेमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिले तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी सबने खाई सदा खाते रहना इसमें कोई बीमारी नहीं होगी अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Deseo.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजद कारी की सीट पर सेट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते विश्व परिवार।

0: Pisuako banane baleo. Pap dada tu chota sa kam dene. Sankalap karte ho. Haath uthao. Sankalap karne wale. कुछ करती है मुबारक हो अभी दूसरे बारी आए तो कुछ खबरी सुन अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देती है, सभी को नहीं कहते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हो सकता है हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना? अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना, बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लिफ्ट से भी रॉकेट बन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साखी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पर जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरी साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरी साथ है, हर एक कहता है मेरी साथ है, मेरा साथी है ना। ऐसे मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो दिखती नहीं है कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो साखी पन का तख्त चोरो नहीं, जो जो अलग अलग बुशारत करती हो ना, उसमें थक जाती हूँ। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, समान संपर्क का किया, थक जाते। एक ही पुशारत करो, साखी का तख्त नहीं छोड़ना, और कुछ नहीं मां तख्त नशी साकी बन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं कहते हैं कि योग क्या, बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छे है, ज्ञान अच्छे है, कहेंगे ज्ञान यूज कर।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अभी मैं नोट कर।

जिसको फले बहुत नहीं करते, बीच से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते खुश होते हैं। बहुत अच्छा वरदान।

Sick.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चों को

Delicious.

stena. Nej, vad det smäcker åka. Du bavta da. Kaffe tjej.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

味しい。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृत्ति में किसी आत्मा के पृथ्वी कोई
3: परिवर्तन करने में
2: लगने वाली है ही नहीं। आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना। आप सब जज बन गए हो एक दो के। बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप सर्व बच्चों प्रति याद प्यार, सर्व बच्चों को मीठे मीठे का दो चार करवे और बाकी मीठे का फिर भी ऐसी आत्माओं के वृत्त भी सदा रहम दिल बने किमिया के सागर बने, लेकिन अच्छा आपने अपने वृत्ति में किसी के वृत्त भी अगर नेगेटिव भाव रखा, इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी

0: संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्मा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ऐसे ही योग

0: चाहे मन सा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे समन संपर्क हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारी सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबको शुभ

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं क्या? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, जिम्मेवार है बाप। बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन के कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी खोलने की कोशिश करते हैं स्विच ऑन करने की, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाते हैं ना, तो कहते करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, कोशिश कर दिया ऑफ करने का। सेकंड में ऑफ करके चले जाते। इसलिए जैसा समय नासिक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द देवान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ ये मैं, लेकिन देवान के मैं शब्द अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरा। तो बाप दादा आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पका करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है, तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो जलाना है, क्योंकि ये भी तो भोज है ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। सत्तर साल अपने हिम्मत से किया, अब भी दूसरों का भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने का चांस दो उन्हों को। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कि ब्याह के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली फिरती से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी वो नौका भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उन्हों को भी चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनको भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं और सनेही सहयोगी आत्माओं को भी देखते हैं। बाप घर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकती है। इसलिए आप भी चांस देने वाले बनो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने है और बनना है। मुक्ति जीवन

Tino loco.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
3: सोचते हो,
4: सोचते हो,
1: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा किसानों के मालिक बच्चों के Yes.

No.

Chamaco.

0: 家。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।